करें, ठीक है. सो इस ऑडियो स्ट्रीमिंग से एक तो पता चलेगा कि जिंदगी गुलजार है, और दूसरा सुपर बाइक के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा सबको. और सुपर बाइक के प्रोडक्ट्स के दामों से आप ये जर्नी जो कि 2 घंटे तक एंजॉय कर रहे होते हैं 11 से लेकर 1 बजे तक डेली बेसिस पे, और साथ साथ कर सकते हैं. मैं है

Kaji, welcome back once again. I'm Sidrahim. Zindagi Gulzar here, sponsored by Super Y Products by Aksa Cosmetics. Super Y Products by Aksa Cosmetics, jo ki aap log use karte hain, use karne ke baad isse wo sari khoobsurati hasil karte hain jo shayad pehle kabhi aapke paas thi hi nahi. To agar aapke saath bhi pimples ka issue rehta hai, acne ka issue rehta hai, chhaiyon ka issue rehta hai, to wo tamam par log jo ki aajkal pimples ke saath saath jo hai pigmentation ko face कर रहे हैं, एजिंग स्पॉट्स को फेस जो है फेस कर रहे हैं, तो इस चीज को अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपके लिए है जी सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम. और सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम जो कि स्पेशली उन तमाम तर मर्द हजरात और खवातीन के लिए बनाई गई है जिनके फेस के ऊपर हो चुकी है बहुत शदीद किस्म की पिगमेंटेशन, छाइयां आ चुकी हैं जी, और छाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, और कुछ खाने से एलर्जी हो गई है या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने यूज की थी पास्ट में जिससे आपकी जो छाइयां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, या आप बढ़ती हैं कम होती हैं और जाती नहीं है, मुकम्मल तौर पे खत्म होती नहीं है. तो अगर ऐसा है तो आप लोग यूज करेंगे सुपर वाई की विटामिन सी क्रीम, जो कि आप लोग यूज करके देखेंगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो डे बाय डे कैसे जा रही है. ठीक है, जिनकी थोड़ी लाइट पिगमेंटेशन है वो पहले ही 3 दिन में रिजल्ट को देख लेंगे कि उनकी जो छाइयां हैं वो किस तरीके से हल्की होते होते कम होती चली जा रही हैं और खत्म होती चली जा रही हैं. और जिन लोगों की थोड़ी सी ज्यादा हैं तो वो थोड़ा सा वीक बाद देख पाएंगे कि उनका जो विटामिन सी ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है. तो ये बात है. तो अगर आप भी पिगमेंटेशन को फेस कर रहे हैं तो मजीद और फेस की हैं सुपर वाइट वालों की विटामिन सी क्रीम को ले ली मार्केट जाके, और लेने के बाद इसको जब आप यूज करेंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन डे बाय डे कितनी खूबसूरत होती जा रही है. पिंपल्स और एक्ने खत्म करने के साथ साथ ये आपके चेहरे से स्पेशली पिगमेंटेशन को खत्म करेगी, और इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करने के लिए, एनहेंस करने के लिए सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं इसके साथ. और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट और मजीद बहुत ज्यादा दुगने हो जाएंगे. ठीक है, तो जरूर अपने खूबसूरती के रिजल्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इन्हेंस करने के लिए सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को बाय करें, और खासतौर पे पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी क्रीम का ये जो मुकम्मल पैकेज है इसको ले लें और आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी. इसके अलावा जी स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि कोरियन फार्मूला से तैयार की गई है, और कोरियन फार्मूले के साथ तैयार की जाने वाली स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम में स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ, वो तमाम तो लोग जो कि स्किन के ऊपर ग्लू लाना चाहते हैं, कोरियन फार्मूले से कोरियन स्किन बनाना चाहते हैं, तो कोरियन स्किन को बनाने के लिए सुपर वाइट वालों की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे, साथ में इसका फेस वॉश भी. एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वेरियंट है स्ट्रॉबेरी, जिसमें आपको इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी मिलती है, टेक्सचर बहुत अच्छा मिलता है, खासतौर पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है. आप इसमें भी

प्रोवाइड का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं और ब्यूटी सीरम बूस्टर आप क्रीम्स में भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पेट्रोलियम जली में भी ऐड कर सकते हैं जो कि सुपर वाइट वालों की ही आप लोग लेंगे। इसके अलावा सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर आप ब्लीचेस में ऐड कर सकते हैं और फेशियल के जितने भी स्टेप्स आते हैं यानी कि क्लिंजिंग, फिर स्क्रबिंग।

में थोड़ा थोड़ा सा आप लोग ऐड कर सकते हैं ब्यूटी सीरम बूस्टर, जरूर ऐड करें और ऐड करने के बाद अपने रिजल्ट को देखें कि कितने ज्यादा खूबसूरत है। प्रोडक्ट्स अगर कहीं से मिल नहीं रहे हैं तो सखर और लाड़काना वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, स्पेशली सखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03147754462, ठीक है। इसके अलावा हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321। कॉल्स भी आप लोगों के लेंगे और पहले एक गाना प्ले करेंगे, गाने के साथ कॉल्स को एंटरटेन करेंगे और मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ बाय द वन एंड ओनली अताउल्लाह खान सखेलवी और गाना है जी रिमिक्स वर्जन में, इसको सुनेंगे और साथ में कॉल्स लेंगे।

0: और नेक्स्ट कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद है। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: मोरो से जयप्रीता बात कर रही हूँ।
0: मोरो से कौन बात कर रही है, सॉरी थोड़ा सा लाउडली बात करें।
1: खैरुन्निसा बात कर रही हूँ।
0: खैरुन्निसा
1: नहीं, जैबुन्निसा।
0: जैबुन्निसा?
1: हाँ।
0: जैबुन्निसा कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ।
0: ठीक है, प्रोग्राम सुनती हैं?
1: हाँ।
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी गुजारे।
0: किसके दामन से है? किसके दामन से है?
1: सुपर बाइक।
0: सुपर बाइक के दामन से है। अच्छा, कब से प्रोग्राम सुन रही हैं हमारा?
1: बस रोज सुनती हूँ, कभी कभी।
0: रोज सुनती हैं, कॉल आज की है। अच्छा, सुपर बाइक का कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगी जैबुन्निसा?
1: अभी कोई आइडिया नहीं है।
0: अभी कोई इरादा नहीं है?
1: नहीं।
0: चलें, इरादा बनाएं और यूज करें, ठीक है? और

0: कहना चाहेंगी?
1: हाँ, गाना सुनाए।
0: कौन सा?
1: जब्त उसका।
0: कौन सा?
1: जब्त ड्रामे का।
0: सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही।
1: जब्त ड्रामे का।
0: ठीक है, दश्त ड्रामे का।
1: नहीं, जब्त का।
0: ठीक है, मैं सर्च करती हूँ जी। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी मतलब बहुत सारी नहीं, बहुत ज्यादा कम आवाज के साथ कॉलर, और मेक श्योर जब आप कॉल करें तो आप प्रॉपर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सिग्नल आ रहे हो, और अगर हेडफोन्स लगाए हो, हैंड फ्री लगाई हो, कुछ भी लगाया हो, निकाल दें, सो डैट आपकी आवाज जो है क्लियरली पहुंच सके और आपसे सही से बात हो सके। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखते हुए कॉल्स आप लोग कर सकते हैं हमें 03000113488। इसके ऊपर आप लोगों की कॉल्स जो कि हम रिसीव कर रहे हैं, और इसके अलावा जी आगे चलेंगे हम एक और कॉलर जो है हम रिसीव करेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो,
2: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: पहचाना तो होगा लेकिन फिर भी
0: नहीं,
2: बिल्कुल
0: नहीं।
2: फिर भी सोचिए, पुराना कॉलर हूँ आपका।
0: कौन सी कॉलर है?
2: पुराना कॉलर
0: नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा, आप बता दें।
2: मैंने कहा, मैंने ये भी कहा था कि दूसरे कॉलर को मौका देना चाहिए।
0: ओके, अच्छा, नहीं मुझे नहीं याद आ रहा, प्लीज बता दें।
2: मोहम्मद हनीफ शाह आपका कॉलोनी।
0: अरे मोहम्मद हनीफ शाह, आपकी भाई आवाज जो है ना आज बहुत ज्यादा चेंज लग रही है, नहीं तो मैं आपको वाकई पहचान लेती। अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन वाकई मुझे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ लगी आज, तो इस वजह से मैं आपको नहीं पहचान जी।
2: सुपर वाइट का असर हो गया क्या?
0: सुपर वाइट का असर ऐसे थोड़ी होगा, सुपर वाइट का असर होगा तो जमाना देखेगा।
2: फिलहाल आवाज चेंज हुई है ना?
0: हाँ, फिलहाल आवाज चेंज हुई है। अच्छा, सुपर वाइट का असर आप पे हो रहा है?
2: बिल्कुल।
0: अच्छा, क्या यूज किया ऐसा जिसका असर हो रहा है?
2: प्रोडक्ट
0: नहीं, सुपर वाइट का कौन सा प्रोडक्ट यूज?
2: प्रोडक्ट कौन सा यूज किया? क्रीम।
0: क्रीम कौन सी वाली?
2: सुपर वाइट।
0: सुपर वाइट की बहुत सारी आ रही है ना, मतलब ऑयल फ्री है, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम है, टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम है, कौन सी वाली यूज की है?
2: स्ट्रॉबेरी।
0: स्ट्रॉबेरी वाली यूज की है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश लिया है?
2: फेस वॉश नहीं, प्रोडक्ट लिया है, बहन ने लिया है। तो बताया मैंने उसको था, मैं कहा फिलहाल आप ले, उसने लिया, लेकिन मैं सखर बस कल परसों तैयारी है, मैं भी देख आऊंगा, लेकिन घर में आ गई है
0: घर में आ गई है ये बात जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और कुछ कहेंगे?
2: बस प्रोग्राम सुन रहे, आवाज इस टाइम को आपकी हल्की हल्की आती है, क्योंकि जैसे दिन गर्म होता है ना, नशियात हमारे पास कम होती जा रही है, लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करनी थी आपको, नशियात जब आपका प्रोग्राम आए तब कोशिश किया करें नशियात बढ़ा दिया करें।
0: जब कोशिश किया करूँ नशियात बढ़ा दिया करूँ? कैसे बढ़ा दिया? कैसे बढ़ा दें, मतलब के
2: जैसे जैसे सुबह हमारे पास 8 से लेकर 10 बजे तक नशरियात होती है ना, ऐसे आनी चाहिए।
0: अच्छा, मतलब क्लियर नहीं आती आपके पास?
2: हाँ जी, साफ नहीं आती।
0: चलो, ये मसला तो वाकई बड़ा मसला है, बड़ा संगीन मसला है।
2: संगीन भी है और फासला तो उतना नहीं है।
0: चले, इस संगीन मसले को हम रंगीन बनाते हैं। और कुछ कहेंगे?
2: बस सब सुनने वालों को सलाम।
0: ओके, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू, अल्लाह
0: हाफिज। 03000113488 इसके ऊपर कॉल्स कर रहे हैं आप लोग, और मैं कब से देख रही हूँ कि मैं कौन सा गाना प्ले करूँ, और मेरे सामने बहुत सारे गाने हैं। सो एक गाना जो कि मुझे मिला है, और इस गाने को मैं सोच रही हूँ कि मैं प्ले करूँ, और ये वाला गाना हम चलाते हैं जी, और इसी के साथ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने भी जाएंगे। और गाना है जी मेरे ख्याल से तसव्वुर गाना, इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं।

0: तव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में तव्हांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स, क्योंकि हमारी लास्ट लिंक है, तो लास्ट लिंक में हम ये सब कुछ करेंगे और साथ में सुपर वाक्य प्रोडक्ट जो कि अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, फेस वॉशेस की बहुत अच्छी रेंज, सोप्स की बहुत अच्छी रेंज, इसके अलावा सुपर वाइज की ब्यूटी क्रीम्स की बहुत अच्छी रेंज और सुपर वाइज की हल्दी चंदन ब्लीच क्रीम भी आती है। इसके अलावा हेयर रिमूवल क्रीम भी आती है सुपर वाइज वालों की, और भी बहुत सारे ब्यूटीफाई प्रोडक्ट्स आते हैं कि जो कि आपकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो मतलब कि इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं छोड़ा है जो कि ना बनाया हो। इन्होंने पेट्रोलियम जेली भी बनाई है, अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए पेट्रोलियम जेली भी बनाते हैं और अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे वेरियंट्स के अंदर बनाते हैं जिससे आपको मिलते हैं बेहतरीन रिजल्ट।

0: Okay, G, beautiful song. And iske saath saath Super White ki products aur Super White ki bahut khoobsurat bana dene wali products. Isma Kishore ka comment acha ye wahi wala hai. Nahi, dusra hai. Acha signal wale volume badha do.
1: Kafsana hai koi majnu koi raaz.
0: Signal ka koi volume nahi hota, signal ke signal hi hote hain.
1: To is pal ko ye beet hi jana hai.
0: Unki approach badhani padti hai.
1: Mujhe sab yahi reh jao.
0: Aur ye meri approach mein bilkul bhi nahi hai. Meri approach mein sirf itna hai ki main aaun, main program karun, acha sa aur main chali jaun. Acha iske ilawa Smart Kishore kehte hain yahan rukne ki wajah नहीं रखती आप सलाम दुआ के बाद क्या बात करनी है या ऐसे ही मुंह में दही जमा के रखनी है अच्छा इसलिए आप कॉल पे आने से डर रहे हैं है ना आपसे हम गाने वाने सुन लेंगे आपसे हम कुछ ना कुछ मतलब करवा लेंगे बेफिक्र हो जाए ठीक है आपके मुंह में हम दही नहीं जमने देंगे इस माँ की शो मोहसिन अली हमें सुन रहे मोहसिन अली कहते हैं गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे आरजे बड़ा जबरदस्त शो थैंक यू खाली जुनी जो कहते हैं सी यू लेटर इवन नेक्स्ट क्यों अभी क्या मसला है अच्छा इस्मा किशोर कहते हैं आप रात में बाहर सोती हैं या ठंडा ज्यादा खा लिया है आवाज थोड़ी भारी लग रही है बस ये टैलेंट आप में ही है कि आप भारी और हल्की आवाज को पहचान सके हाँ ये है कि
1: मिट मिट बोल के कन्ना में चकोल के जगन सुनाइयो सी आज दिल
0: के
1: उदी अमेर को
0: हो सकता है ऐसा हो
1: प्यार तो कोई भी मलाल नहीं
0: और शायद थोड़ा बहुत है भी लेकिन खैर कोई बात नहीं
1: यार
0: आवाज भारी हो या हल्की अच्छा मेरी आवाज वो वाली है भी नहीं कि जो भारी होने के बाद बुरी लगे या जो जुकाम होने के बाद बुरी लगे ये एक चीज है मेरे अंदर जो कि गॉड गिफ्टेड है ना पीछे पीछे जेड़े होंदे आवाजात में ब्यूटीफुल लाइन 03000113488 के ऊपर कॉल्स लेने जा रही हूँ और कॉल्स बहुत सारी जैसे सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स बहुत सारे वैसे ही आप लोगों की कॉल्स भी बहुत सारी

0: कुछ लोगों की जुकाम में आवाज और प्यारी हो जाती है। वो कौन से कुछ लोग हैं? खाली जुनेजे कहते हैं आपका वाहि चैनल है जहां लिसनर्स के मैसेजेस इग्नोर नहीं होते, पढ़े जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं आपके पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो इग्नोर नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा जी कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद होंगे नेक्स्ट, और मैक्सिमम कॉलर्स को लेने की मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत कम कॉल्स ली हैं। सो नेक्स्ट कॉलर, हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओके, सुपर वाइट के कौन से प्रोडक्ट यूज किए आपने?
1: लाड़काना में नहीं मिल रहे हैं इंशाल्लाह।
0: तो हेल्पलाइन नंबर बता रही हूँ स्पेशली सखर और लाड़काना वालों के लिए, तो वो क्यों नहीं डायल कर रहे
1: आप?
0: तो जरूर करें, मैं अभी बताती हूँ, आप वो नोट डाउन कर लें और उनको बताएं कि लाड़काना में मिल रही है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी अगली बार।
1: आपका प्रोग्राम जबरदस्त चल रहा है, लाड़काना ऐसे साफ नहीं है।
0: लाड़काना आपने
1: लाड़काना जब ऐसे मिला ना वो साफ नहीं है।
0: अच्छा, स्ट्रीमिंग साफ नहीं आ रही?
1: एफएम साफ नहीं है।
0: एफएम साफ नहीं है और ये बहुत सारे लिसनर्स से मुझे सुनने को मिल रहा है। खैर, और थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जैन अली का कमेंट आया है, किसी को पानी के लिए किस्मत चाहिए, इंतजार करने से वो लौट के नहीं आता। अच्छा, वेरी नाइस।
2: यहाँ जितने दीवाने सबका अफसाना है, कोई मजनू
0: कोई आशिक, यहाँ कोई दीवाना है। गाना खत्म हो गया हमारा, इसलिए हम आतिफ असलम का ही नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे। एंड ये वाला नेक्स्ट सॉन्ग जो कि हम प्ले कर रहे हैं, और ये वो नहीं है जो कि मैंने सोचा है, मतलब जो मैं चाह रही थी प्ले करूं, ये वो वाला है ही नहीं। सो इनका एक सॉन्ग है, हाँ मिल गया मुझे, हूँ इश्क में, ये वाला भी इनके एल्बम का बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, और ये वाला हम सॉन्ग सुनेंगे और इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे 03000113488 और सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वालों के लिए 03147745462।

0: lost.
1: Aoki ji, beautiful song. Aur song ke saath saath mujhe nazar aaya hai ek aur song. और ये है जी लेटेस्ट सॉन्ग जो कि मैं प्ले कर रही हूँ. और साथ साथ ऐसे ही अगर मुझे अच्छे अच्छे गाने नजर आते रहेंगे तो मैं डेफिनेटली प्ले करती रहूंगी. और टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है, टाइम को अगर देखा जाए. एंड दिस सॉन्ग इज बाय आशिर वजाहत.

ब्यूटी क्रीम आगे पीछे हो गया। सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम जो कि आप यूज कर सकते हैं जी कोरियन ग्लास स्किन हासिल करने के लिए, और कोरियन ग्लास स्किन आई की राइस की जो खूबसूरत से एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, और सुपर वाइट वाले असर कॉस्मेटिक्स वाले यूज करते हैं जी सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में। राइस की बहुत सारी खूबियां और साथ में इसका फेस वॉश भी इसी वेरियंट का है, सुपर वाइट राइस फेस वॉश जो कि आपकी डल स्किन को खूबसूरत बनाएगा, आपकी डल स्किन को लाइटन अप करेगा, ब्राइटन अप करेगा, फेयरनेस आएगी, पिगमेंटेशन है वो जाएगी, पिंपल्स हैं वो खत्म होंगे, ठीक है, ये एडिशनल जो प्रॉब्लम्स है ये भी खत्म होंगे, और साथ में कोरियन ग्लास स्किन आपको मिल जाएगी। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही मार्केट जाएं और लेकर आए सुपर वाइट के इन प्रोडक्ट्स को जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, और याद रहे इनके तमाम प्रोडक्ट्स के साथ आप लोगों ने लेना है सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर। सो अगर आप इसको ऐड करते हैं किसी भी अपने मॉइस्चराइजर में, किसी भी क्रीम में, किसी भी ब्लीच क्रीम में, या फिर अपनी पेट्रोलियम जेली में, तो उसके रिजल्ट डबल हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन फेयर होने लगता है, और स्किन ब्राइटन अप होती है, स्किन लाइटन अप होती है, डल स्किन जो है रिपेयर होती है। तो ये खास बात है एक, और ये एक किस्म का जो जादुई ब्यूटी सीरम बूस्टर है सुपर वाइट अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज ही मार्केट जाएं और इन प्रोडक्ट्स को लेकर आएं और इन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें, एंड देन फीडबैक भी जरूर दें। और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है जी, सो हम जाएंगे जरूर, और वापस आने के लिए जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हम लास्ट में प्ले करेंगे एक और खूबसूरत सॉन्ग, और इसी के साथ प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, बामान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: सुकून जो रस्तो मौजूद है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: जेकर तवांखे मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसाला आहिन त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 and 0312-1401-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
12: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोर, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं। भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा निखार रहना चाहिए या फिर आपके चेहरे पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ने आप लोगों को परेशान कर दिया है, चेहरे की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूज के फौरन बाद ही आप लोगों को इतने जबरदस्त इतने शानदार से प्रोडक्ट जब मिल रहे हैं तो उसका यूज कीजिए और आप अच्छा वाला जो है ना वो निखार हासिल कर सकते हैं और अच्छी वाली खूबसूरती भी हासिल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, यानी कि जब आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर बनिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिए। ओके जनाब, यहाँ पर बताएंगे तफसीलन बहुत सारी बातें, लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए सवाल क्या होने वाला है वो सबसे पहले बताते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए और आप काइंडली टॉपिक के ऊपर भी बात कर सके। ओके जी, तो आज के सवाल की जानब आते हैं, तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन वो मछली नहीं है। हाँ जी, और आप देखकर उसे बोलेंगे कि ये दिखता भी तो मछली की तरह है लेकिन क्या ये मछली नहीं है, लेकिन हाँ वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सा जानवर पानी में रहता भी है लेकिन वो मछली नहीं है और शायद दिखता भी मछली जैसा है लेकिन वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएं जल्दी से, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घूरने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनने वाले लिसनर्स हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LR के सिंगल स्पेस दीजिए, अपने नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 2821 पर। ओके जी, 8881 पर मैसेज भेजेंगे तो आपका मैसेज हमारे पास आ जाएगा और इसी के साथ साथ बाकी अगर आप हमें फेसबुक पर सुनने वाले हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। कितने सारे यहाँ पर देखो लोग हैं जिन्होंने कॉमेंट तो कर दिया लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं किया। अरे कंजूस हो, लाइक भी करना होता है। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। हाँ जी, ये बोनस पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए और कमेंट करते जाइए और मुझे बताइए कि कौन सा जानवर है जो पानी में तो रहता है लेकिन वो मछली नहीं है। उनखा अलावा तुम सी प्रोग्राम में शामिल आयो बाबा, बिल्कुल तमाम प्रोग्राम में जी ना फीडबैक्स असा शामिल प्रोग्राम रखना सी, पर जिन जिन मानून अन्या ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज ना कर बाबा, तमाम छो न कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज, अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज न करण की वजह यह है तुम वट डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम के करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल को नया है, तो उन्हें चलाए तुम करा तुम्हें नंबर्स बुधाया पे, नंबर्स के मथा तुम राबतों करे वो जी तुम राबतों करे वा तो तुम करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराई वो। सो नंबर्स आए नोट करे वो। ओके जी, नंबर से 0332738 4309 बुरी 300 है 73 84 309 एंड बियो नंबर आहे 03125025907 बुरी 312 50 25 970 ही नंबर्स आहें जेके तमा डायल करे पांचे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था, बिना कहीं देरी जे, बिना कहीं टेंशन जे, बस तां नंबर से राबतो कयो, तमा कॉल भी करी सको था, तमा मैसेज भी करी सको था, तमा बुधायो बाबा तारिक भाई वेठो आए तमा जे इंतजार में, तो केमल असना सोना लिसनर कॉल कन था आई असा उनन जिला करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो था, सो तमा भी थोड़ी हेल्प कराए वठना कयो असा जे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो जे तमा के वठन में आसानी थे आई तमा जे आसपास जे मानन के भी खबर पवे था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने असा जे एरिया में भी मिलन था। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा है। उनका अलावा अलीशा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सबसे पहले पोस्ट पर मौजूद, कहती हैं कि हमें थाम के रखना, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे, कहती उन्हें जब देखते हैं तो बदल जाते हैं ये लहजा, जबां पे आ ही जाते हैं अदाएं शायरों जैसी, क्या बात है जी, क्या बात है, लिखती है कि मैं तेरे ख्यालों से निकलूं तो जमाना देखूं, ओ यह गाल कही नहीं। आरे सादे कहते अस्सलाम वालेकुम।
पटीदन शॉप है, मेरी पटीदन पे शॉप है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम चला रहा हूँ। आबिद भाई ने अवेलेबल करवाई है, बहुत अच्छी रिजल्ट है। ओके जी, आसिम राजपर जो है वो उनकी पटीदन में शॉप है तो वहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश मिल जाएगा। तो जितने भी पटीदन वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो आमिर भाई की शॉप पर जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। ऐसा ही ना आमिर भाई, वेलकम कहते हैं आपको। और माहिर इरफान सियाज साहब हमारे साथ कहते हैं ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और गुड आफ्टरनून मैम आरजी, गुड आफ्टरनून टू यू सर। और जैन लिखते हैं कि पकड़कर नब्ज मेरी, डॉक्टर ने कहा। अच्छा, लड़कियों की भी नजर लगती है। कहते कि माना कि तुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर मैं तो मतलब ही हूँ, मुझे तो तू चाहिए। कहते कि जो तुझे देखकर फिर किसी और को भी देखे वो तमाशाई है, तालिबे दीदार नहीं। सही कहा आपने। और अबू हनीफ अलबलोची हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम कहते हैं भाई। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम असलम भाई जान, खुश आमदीद। मीर मुमताज अली जतोई, वालेकुम असलम। अदी तमाजी सफा भलिया कहते हैं अल्लाह पाक तमाके खुश रखे, हमेशा मुस्कुराईंदा रहो, माशाल्लाह बेहतरीन शो, जबरदस्त कंपेयरिंग। गुड आगा खान जतोई लाड़काने खां, मीर मुमताज अली जतोई, मोहम्मद मुदसर एस मुमताज जतोई भी तवां सां गॾु आहे। सभिनी खे चवंदा भली करे आया डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो। मुमताज भाउ कोन मूंखे ॿुधाइजो ऐं तव्हां जूं मोहबतूं आहिनि, तव्हां लाड़काने खां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। तारिक भाई बि हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। और किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा, आउं रेडी तयार, खुशबू भी लॻाए आयो आहियां। तोखे अचे पई खुशबू? वाकई मूंखे खुशबू अचे पई। हाँ जी। और हमारे साथ है गुड आफ्टरनून, हाय हेलो सदरा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, वेलकम कहते हैं। जितना भी लड़का लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो मुस्कान, ये सॉन्ग चलाना, मैं कोशिश करूंगी जी, गाने आपके लगा देंगे। वासु भाई हमारे साथ है, हेलो, मैं ठीक हूँ वासु भाई, आप कैसे हैं? आप ऐसा करें, सारे लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ मुझे बताइए कि भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके या नहीं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे ना तो सुनने वाली समाज को भी पता चलेगा वाकई भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो कितने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं वो लोगों के साथ ना शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। लोगों को पता चले कि भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो कितने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर दर्दी दिल हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? लिखती हैं गुड आफ्टरनून माय फेवरेट आरजे, कैसी हैं आप? मजे में जी, मजे में हूँ, आप बताएं? मजे में है। और कहती हैं नाइस वॉइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। दर्दी दिल ने लिखा है कि रूहे मन, ये बड़ी शायरी है तो इसको थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे। और वहीद वफाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मां ठीक आया था, पंहिंजा हाल अहिवाल जो तव्हां चेकअप बाद खां असांखे जॉइन कयो आहे, सो मोहबतूं आहिनि तव्हांजो। दर्दी दिल कहती हैं चंदा मीरपुर खास FM नहीं चल रहा, बड़ी शिकायत लगा ते हैं क्यों नहीं चल रहा। और वही प्रोफाइल कहते हैं इतना दर्द है क्या दिल में, फिर तो कहर हो गया, किसका किसके दिल में दर्द है, इलाज करवाते हैं उसका। अच्छा, उन्हें कहे अलावा आबिद भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई, आप ही की बात हो रही थी। आप भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बड़ी तेजी से अवेलेबल कराते जा रहे हैं, ऐसे ही अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखिए और जहां जहां

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय करिए, उसके साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको खूबसूरत बना रहे हैं। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोग लगा चुके हैं उनसे पूछिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना प्यारा कमाल का रिजल्ट उनको मिल चुका है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, आप सब लोगों के लिए है। जी हमारे साथ हमारी दर्दे दिल लिखती है कि रूहे मन आंखें तेरी ताबे कर दी गई हैं, उनका खिल उठना मुरझा जाना तेरी नजर आने न आने से वाबस्ता है। तो मेरे लिए वही यूस्ट हो जिसके बारे में रब फरमाता है, ओके बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, हाँ तुम यूस्ट ही तो हो, आसानी सुकून और दुखों की गहराई निकल कर मिल जाने वाली रहत। अच्छा के, ओके अच्छा, ये हमारे साथ अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि हे ढूंढती जिसको नजर मेरी वो तुम नहीं तो कौन हो, हे जिसका नाम जिंदगी वो तुम नहीं तो कौन हो, था जिसके वास्ते ये दिल दर्बदर रहा अब तक मेरे जहां में, वो कमी तुम नहीं तो कौन हो। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। अच्छा उन्होंने कहा अलावा हमारे साथ हैं आबिद भाई, कहते आमिर भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है, आप दीपक भाई को ही देख लीजिए, दीपक भाई जो है ना, दीपक भाई ने भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं जनाब, और दीपक भाई की मेहनत को सराहते हैं हम। और यहाँ पर जितनी भी भाई डी स्किन की टीम है ना, वो लगन से काम कर रहे हैं, बाकी जो सुनने वाले समाते हैं वो इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, ये तो वही बताएंगे। तो जितनी भी सुनने वाली समाज हमारे साथ मौजूद है, मुझे लाजमी बताया करें कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितनी भी सुनने वाली समाज हमारे साथ मौजूद है, मुझे लाजमी बताया करें कि आप डी स्किन

विलेज अंदर खान मल्हा मोरो से बाजी आज की टॉपिक शायद ओके हो गया। कहते हैं बाजी मैं आपका शो तकरीबन 4 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन वो जो आप कहती हैं ना घुनने वाले लिसनर्स, बस वही वाला हूँ मैं। और कहते हैं कि बाजी आज भले कुछ भी हो जाए, चाहे लिस्ट ही क्यों ना फुल हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे गाना सुनाना नुसरत अली खान का। मुझे इस शराबी, अच्छा चले मैं आपको ये गाना बिल्कुल आपको सुना दूंगी, भले लिस्ट फुल हो जाए लेकिन आपका गाना लाजमी चलाएंगे। और हमारे साथ ही अल्ताफ अली गादी बलोच कराची से कहते हैं, अच्छा टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया। हिदायतुल्ला अहमदानिया में सुन रहे हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं हिदायतुल्ला। और हमारे साथ ही नजीर कुसु भाई, ओके जी बलोचिस्तान से भी सुन रहे हैं नजीर खुसो भाई। बताएं जरा बलोचिस्तान में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे लगता है कि हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, और जहां भी आप जाएं, कहीं भी आप विजिट करने जाएं, घूमने जाएं, ट्रैवल करने जाएं, तो वहां पर आप लोगों को हर करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आराम से मिल जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आप बस लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। क्या बात है, बढ़िया हो गया ना।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना बहुत ही हमारे खूबसूरत लिसनर्स एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं जनाब वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मोहम्मद जमान आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, ठीक हो गया जी। जुबेर सरवर हमारे साथ हैं। जुबेर सरवर लिखते हैं फ्रॉम मोरो, ये रेडियो की दुनिया में हमें परिंदों सा दिल देकर परिंदों की बस्ती में उतारा गया है। खुश हो जो सदा सभी तमाम विभाग खुश हो जो आई तमाम एड़ी भली नंदड़ी नंदड़ी दिल रखो। तो ये बात तो है ना कि जन्नत में तो वही जाएंगे जिनके दिल चिड़िया की जरा नाजुक होते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये दिल जरा संभाल के रखिएगा। मुकुल उमरानी हमें सुन रहे हैं, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और हया मानो हमारे साथ कहती हैं कि हम जैसे नहीं हो सकते आप हमारे अंदाज चुरा लेने से, ओ इहा गाला बिल्कुल सही। और हमारे साथ हैं जी अल्ताफ अली गादी बलोच, कहते हैं हाय सत्रा जी। एक तो जी जी आपका सवाल हमने देख लिया जवाब यानी के, और अच्छा है आप हमारे साथ। मुझे बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई या अभी तक खाली सोच रहे हैं। निजाम भट्टी कादरी हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, मटियारी का तमाशा की ज्वाइन किया हुआ है। प्यारा भारत मुझे मोहबत हुआ तांगे प्रोग्राम पसंद अच्छी पे हजार भाई एडो वडो कमेंट लिखो अथव हल खत्म ही कौन दू। ये सिर्फ मुझे आप 5 बजे वाले प्रोग्राम में शेयर कीजिएगा यही वाला कमेंट, ठीक है। और गुलमीर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। और हमारे साथ हैं जी गुलमीर भाई, बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा लेंगे। बख्त अली सियाल हमें सुन रहे हैं, भाई को वेलकम हो गया। अलीशा कहती है कि मामो परवेज के लिए थारो शाह में फेस वॉश अवेलेबल करवा दें डियर सिडो। जी जी फेस वॉश भी हम जो है ना वो अवेलेबल कराते जा रहे हैं। फेस वॉश जो है ना वो थोड़ा ऐसा है कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहले आई और फेस वॉश जो है वो अभी अभी इन होता जा रहा है मार्केट के अंदर, तो जहां जहां पर फेस वॉश की कमी है तो आप बताइए ताकि हम वहां वहां पर फेस वॉश भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते रहे, ताकि आप लोग दोनों चीजें साथ में लगाकर आप अच्छा वाला जो है ना वो निखार हासिल कर सके। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा हाँ एक हाँ लिंक मोकलिया तो अगर मुझे जवाब सही हो जाए हलाई बता जो गानों। और स्मार्टो भोपाल कहते हैं हाय वालेकुम अस्सलाम, माय फेवरेट आरजे सदरा मुस्कान, आई एम लिसनिंग योर शो इनकम पर सिटी। ओके जी आपको भी वेलकम हो गया। फायजा का गाना कोई अच्छा सा सुना देंगे आपको, और आप जरा प्रोग्राम में बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं जनाब वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए और टाइम हुआ है जनाब न्यूज ब्रेक का, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ।

0: इफ टू पी चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपरवाइज राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम,
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट

वरी असां फाते साबित थींदासीं। मां तारीख़ में सभ खां वधीक इंसानी जानियूं बचाइण वारो शख़्स आहियां। डोनाल्ड ट्रंप रूस पारां अमेरिका खे डीज़ल फराहम करण वारे ऐलान ते बि मॉस्को जा थोरा मञिया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां शुगर जी माहिर डॉक्टर जी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज़ शरीफ पारां शुगर जी रोकथाम लाइ जामा हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। वज़ीर आज़म चयो आहे त शुगर जहिड़े मर्ज़ खे रोकण लाइ आगाही ॾियण सां गॾु तिबी तहक़ीक़ खे बि तेज़ कयो वञे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी पारां तरक़ियाती मनसूबनि जो दौरो। मोहसिन नक़वी ऐं तलाल चौधरी मारगला रोड जे मोटरवे ताईं वाद में संगजानी इंटरचेंज जो जाइज़ो वरितो। मनसूबनि ते डबल शिफ्ट में कम जारी रखण ऐं कम तेज़ करण जी हिदायत। मोहसिन नक़वी चयो आहे त रिथा सां इस्लामाबाद जे शहरनि खे मुतबादिल रस्तो मिलंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है कि कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके

0: उससे मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
0: सुपर वाइट.
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप. प्रोग्राम दाखिला ए ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारहान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे. जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा. अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था. हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी. नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं. मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि. तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप.
3: जे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन.
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी. यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842.
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी.
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस मींहं में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
7: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी.
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मरीज जो बुख, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम।

0: ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न। ॻाल्हि करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: जीए FM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम आ जाता है, एक्नी के निशानात आ जाते हैं, या फिर रिंकल्स बहुत जल्दी आ चुके हैं, फ्रेकल्स आ चुके हैं, क्रीकल्स आ चुके हैं, ये तमाम चीजें भी अगर आपके चेहरे पर मौजूद है, आप उन्हें हटाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पाते हैं, तो भाई साहब आपने क्या करना है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है या फिर खाली मैं ही कभी कभी पूछ लेती हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आगे जाकर फ्यूचर में करेंगे, तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों करेंगे। अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आपको ना उसका जवाब पता होना चाहिए कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों लगाएंगे। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ये फायदे आप लोगों को मिलते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि आप लोगों को पहले शायद इसके बारे में नहीं बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स जो एड किए गए हैं ना, तो इससे हमारी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के जो रिजल्ट्स हैं वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारा जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज भी एड रखी गई हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो फेशियल वाले मिलते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना सिर्फ विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स हैं, बल्कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को प्रीमियम फार्मूला बनाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो ऑल स्किन के लिए सेफ भी है और ये आपकी स्किन की हिफाजत भी करता रहेगा। तो आप लाजमी से इस्तेमाल करके देखिएगा। खूबसूरती खूबसूरती को मेंटेन रखना, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। खूबसूरती हासिल तो आप वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन रखना थोड़ा सा अजीब सा काम हो जाता है, क्योंकि अगर आप काम भी कर रहे होते हैं और काम करने के साथ साथ आपसे स्किन केयर नहीं हो पाते हैं, स्किन केयर अगर आप नहीं करते हैं सही से, तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपके चेहरे पर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप अप्लाई करें जो कि आप अगर इस्तेमाल करते रहें तो आपको जो, तो अगर ऐसा होता है ना कि हम थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ दो, उससे ये इफेक्ट आपके चेहरे पर ना आए कि भाई आपके चेहरे की स्किन खराब हो जाए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपके चेहरे की स्किन खूबसूरत होती रहेगी, खराब होने के तो चांसेस ही पैदा नहीं होते मेरी जान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप सब लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो ये चीज भी याद रखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ अगर आप जाएं तो फेस वॉश लाजमी परचेज करके आए। और अगर फेस वॉश आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है, जैसे हमें प्यारी

अलीशा ने बताया कि हमारे यहाँ फेस वॉश नहीं मिल रहा है, उनके यहाँ भाई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, फेस वॉश नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही आप भी बता दिया करें कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर कौन से प्रोडक्ट की कमी है, ताकि वो अवेलेबल करा दिया जाए, आपके लिए आसानी से हो जाए कि बस आप जाएं और परचेज करके आ जाए। तो ये चीज भी आप लोगों को नंबर्स बताए जाते हैं जिनके ऊपर आप रापता करते हैं और फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप भी परचेज करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को और कहाँ से मिलेगी, डी स्किन का फेस वॉश परचेज करना चाहते हैं कहाँ से मिलेगा, तो आपको बता दिया जाएगा या फिर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके जी, तो नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर जरा नोट रखा करें। नंबर है, पहला नंबर है 0332738439। बड़ी 300 73 84 300 नंबर, एंड योर नंबर आ है 03 12 50 25 907। बड़ी 312 50 75 970 ही बई नंबर तव्हां डायल करे सघो था। बाक़ी उन्हनि माण्हुनि जे तरफ़ बि अचूं जेके भई असांखे ॿुधनि पिया डेरा अला यार खां। डेरा अला यार में भी हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से सुना जा रहा है। तो वैसे तो ये बात है कि डेरा अला यार में ना आप लोगों को हर अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर, मार्केट में, अपने किसी भी छोटे मोटे जनरल स्टोर्स में आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये दीपक भाई ने अवेलेबल करा दिए हैं। हमारे बहुत अच्छे जनाब डिस्ट्रीब्यूटर हैं दीपक भाई, उनकी मेहनत को, उनकी अजमत को सलाम है जनाब। इतनी मेहनत से और शिद्दत से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते जा रहे हैं। तो दीपक भाई ने डेरा अला यार में सब तमाम शॉप्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा रखा है। तो आप जरूर से अगर वहां से हमें सुन रहे हैं डेरा अला यार से, तो मार्केट जाइएगा, चक्कर लगाइएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। लेकिन अगर वो लोग जो कि भाई नहीं चाहते कि भाई हमें नहीं पता कि कहां पर अवेलेबल हैं, कहां से मिल सकते हैं, तो आप लोगों को दीपक भाई का नंबर भी बता रही हूं साथ साथ, उसके ऊपर आप रापता कर सकते हैं। रापता करने के फौरन बाद ही दीपक भाई आप लोगों को गाइड कर सकता है कि आप कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। ओके जी, सो नंबर है 03 12 46 111 90। 03 12 46 111 90 ये नंबर है जो कि दीपक भाई का है। आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात ले सकते हैं कि कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और जनाब इस वक्त दीपक भाई हमें सुन रहे हैं, उनके प्यारे बेटे हैं मेहरवां। मेहरवां इतना खूबसूरत नाम है, कसमें क्या बात है। तो उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेहरवां को और दीपक भाई दोनों को वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों की इतनी मेहनत शामिल है, तो आपकी जनाब मेहनत को अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देगा और ये मेहनत का आपको फल मिलेगा, इनाम मिलेगा। और आप ऐसे ही सच्ची दिल से, सच्ची मेहनत से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से मेहनत करते रहिए। और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो भी जनाब लगाकर अच्छी और खूबसूरत हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों को पता है जो लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, वो जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो लगाने से ये भी चीज आप लोगों को टेंशन नहीं कि भाई हमारी स्किन खराब हो सकती है या फिर क्या मसला, हमारी सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते। आप हर स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, मर्द हज़रात ही लगा सकते हैं, खवातीन ही लगा सकते हैं। और जनाब ये भी कोई टेंशन नहीं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम लगाएं या ना लगाएं। कॉम्बिनेशन टाइप स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो, हर स्किन के ऊपर आप बिल्कुल लगा सकते हैं और हर मौसम में भी लगा सकते हैं। तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। और इनका अलावा प्रोग्राम जे बे कलाक में अची वया हूं तो तमा के चौथा भली करी आया, तमा जो मोहब्बतूं आयन बाबा, तमा कदी कदी वाकी पानी हुजन जो सबूत दे छरी ना करो, असा के खबर हो जे तो तमा जिंदा आयो। आई जेको अज मा तमा का सवाल पुछवा है, सवाल बिल्कुल आसान आई आसान खां भी आसान पुछवा है, तो तमा मुखे बुधायो वो केड़ो जानवर आ है जेको पानी में त रहंदोआ पर वो मच्छी ना है। हां जी, वो फिश ना है। आई हां, तमा चवंदा त लगंदो त फिश जी आए पर फिश आए कोन। तमा बुधायो मुखे जल्दी जल्दी 888 नई फेसबुक ते तमा मुखे जॉइन ना हलो जेरे तमाज लाई राडू बलो फायसाली जो गानो हलायो आहे वाइसा जो गानों बुधूं था। गाने से अगर तवाजा कुछ मैसेजेस आए उन तरफ भी अचूं था, तवा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कर हलो। अलावा डी स्किन ब्यूटी
लगाई कौन लगाई। हाँ बड़ा प्यारा ही, देख लीजिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके नाम की वजह से कितनी डीज कंप्यूटर क्रीम के अंदर जो है ना वो जान आ चुकी होगी।

और मुझे मैसेजेस के जाने भी आते हैं, साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, बातें भी करेंगे जो हमारी फजली हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और माय स्वीट बेस्ट आज शहजादी सिस्टर सदरा मुस्कान, कैसी हो डियर स्वीटी? सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से, और आपको वेलकम कहते हैं हमारी प्यारी फैजली। और जवेरिया भी हमारा शो सुन रही है, हमारी प्यारी जवेरिया जो है वो भी जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है, और जवेरिया को भी हम वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ है सूरन जो साथी सावन चांडियो शहर सजावल जूने जो बाजी तवां जो शो वीआईपी आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम कसम सा भली आहे चौथा आई तानो में लिखियो आहे मुझे ख्याल में। जी बिल्कुल, सवन जो गानो तव्हांखे ॿुधायो वेंदो। तव्हांजी डेडिकेशन आहे कासिम बंगलानी, सिकंदर चांडियो, आसिफ चांडियो, ओके हो गया जी, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। मकसद मल्हा मीरापुर से कहते हैं कि आदाब आदाब दी स्किन ब्यूटी शो में मुझे मास्टर मंजूर का गाना तो सुना दे। ओके जी, बिल्कुल आपकी पसंद का गाना भी लगाएंगे, लेकिन ये मुझे ये बताएंगे आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई है। और सजाद अली रुस्तमानी भाई हमें सुन रहे हैं मातली से, कहते हैं बिल्कुल सजाद भाई तुम सही चयो आए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम से तुम्हारी मोहब्बत आए बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इस्तेमाल कई आए, तुम्हें ढा भला रिजल्ट भी मिले है, तो इस्तेमाल कहता रहो, अना खूबसूरत ही सोना सोना थन्दा रहो। वोट मोमन तैयार थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई कहते हैं आरजे सदरा मुस्कान, अशो तुम्हारा तमाम लाजवाब है, सलाम तुम।

जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने एंजॉय किया। बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है जो कि AI वर्जन होने वाला है। ये गाना मैंने मतलब कल ही सुना था और मुझे ये लगा था कि ये गाना प्रोग्राम में लगाऊंगी लेकिन इस गाने की फरमाइश आ चुकी है। किशोर भाई ने गाने की फरमाइश करी है तो हम

बताने को इंजॉय करेंगे और साथ साथ जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दे और मुझे बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट की आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस वॉश लगा रहे हैं ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है। अब मेरा आवाज साफ आ रहा है, मुझे बताएं।

क्या बात है जी, अगर तव्हांजी स्किन ब्रेक क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त बाक़ी माण्हू तव्हांजे लाइ बि इहे चवंदा, तव्हांजी रेस बाबा केयर करे, तव्हांजे हुस्न जो त जवाब ई कोन आहे। ऐं दी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां मर्द हज़रात ख़वातीन सभी लॻाए सघो था। दर्द त लॻंदी आहे की इंसान की सबसे ख़ूबसूरत दुनिया उसके ख़्यालों की दुनिया होती है, क्योंकि वहां वो वही ज़िंदगी जीता है जो उसका दिल चाहता है, चाहे वो चंद लम्हों के लिए क्यों ना हो। यस, सही कहा आपने। हिदायत आपने भी जवाब दे दिया, ओके हो गया जी। अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, कहते सलाम बहना, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और आपने लिंक शेयर कर दी है, गाना आपको लगाने की कोशिश करेंगे। समाटो कहते हैं थैंक्स आरजे, इट्स ओके, डोंट नॉट वरी। उम्मीद अली लाशारी हमारे साथ है। उम्मीद भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे आरजे सदरा, केड़ा हाल है तमाम जा, प्रोग्राम तमाम सुठो आहे, मिरपुर खास जुलरी खां उम्मीद अली लाशारी, सलाम अदील अबड़ो चाचा खाले जुड़ी जो आरजे सुमेरा और फजली आरजे गुलनाज, प्लीज प्ले शमन मीराली। ओके जी, शमन तव्हांजे लाइ हलाए वठूं था, शमन बाबा कारी कोन वेंदो तव्हांजे लाइ वेठो आहे सीट ते, पर हुन जो टाइम ईंदो त लाज़मी हुनखे हलाए वठूंसि था। तव्हां हिकिड़ो कमु कयो, मिरपुर ख़ास में पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से हलिया वञो, उतां तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करे अचो, ठीकु आहे।

अम्बे किशोर भाई देख ले, मैं वही सोच रही थी, मैंने ये सोचा था कि मैं ये गाना जो भी लगाऊंगी आज वाले प्रोग्राम में या शाम वाले प्रोग्राम में, लेकिन फिर मशीन आ जाती भाई आप लोगों को वो है ना जरा कनेक्शन है भाई हमारे बीच में देश के डेरे क्वीन का, समझ रहे हैं। अच्छा चने से थी वो हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारा भाई। वैसे इधर तो सारा सिस्टम सही है, अगर मैं कुछ करूंगी तो थोड़ा इधर उधर सीन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है सही है सब। हिदायतुल्लाह आप जरा उधर अपना चेक कीजिए, नेटवर्क का शायद इशू हो सकता है थोड़ा सा। और ये जी गुलाम अब्दुल गुलाम कैसर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे अंकल को, और आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। आप डी स्किन ब्यूरो क्रीम का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा। अच्छा फेस वॉश की ये ना खास क्वालिटी है कि फेस वॉश आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को डीपली क्लीन कर देता है। अगर आपकी स्किन क्लीन होती है, आपके चेहरे पर ग्लो आ चुका होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई अब हम कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा फेस वॉश लगाएं, क्योंकि ये चीज ज्यादा हमें ना परेशान कर देती है। बस आप डी स्किन का फेस वॉश अपने पास रख लीजिए, ट्रैवल करने के अगर आप शौकीन हैं तब भी आपके पास मौजूद रहेगा, बस आप कहीं पर भी जाइए डी स्किन का फेस वॉश साथ लेकर जाइए, इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जल्दी वापस आ जाते हैं, आप यहीं पर मौजूद रहिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।

0: Stay connected and keep listening. Whitish and Dee's Skin Beauty Show.
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: DAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तपई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन अ सेशन लाइट।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: अरे न खुश ऐं बीरोनो की स्किन हर इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर यू कीअं तोखे खपे सुपर वाइट ड्राई कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिंद मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिंद खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
7: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी।
8: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0308631633।
4: खुशखबरी पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। बिल्कुल जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण भिरापुर मादली लोरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम में जनाब वाइटेश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो जाइए और परचेज कीजिए बाबा, इंतजार छाजो कयो था।

ओके जी, जो लोग श्रवण का गाना सुनना चाहते हैं, ये गाना उन लोगों को डेडिकेट जाता है। और साथ ही साथ जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए नहीं बताए तो क्यों नहीं बताते हैं, जड़ो थी न तो सभी माता सभी जड़ो कहते स्किन ब्यूटी क्रीम को न वरती है छू न वरती है। वाह वाह, ऐसा अजकल मैं वाइब में गाल वाइब चेक कयो, वाइब बस मिलन घुर्जे, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो अना तक कोन वरती है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण जाए लाई सारा फायदा है बाबा। सब का पहली गाल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है सभी मानों के लिए तैयार थी है, सब माना सब इन में मर्द भी अची वन खातन भी अची वन थी। अक्सर कुछ मानू वही चवन तो बाबा क्रीमों तो सिर्फ मायू वणंदियों, वरी हाँ अगर असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर फेशियल जो जिक्र क्यूं था तो तुम सोचिंदा हूं तो बाबा हि जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम है खातन के लिए है, तो बिल्कुल भी कोने को तवी सोच के थोड़ा चेंज कंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तक बुधाईदी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये तुम सभी के लिए है, मर्द भी लगाए सो था खातन भी लगाए सन था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यकीन तुम्हें जो है स्पेशल वा रिजल्ट डींदी छो इनके अंदर जो वाइटमिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स ये जी बई चीजों हैं ये महंगन महंगन फेशियल के अंदर एड कई वेंदियों इन लिए जी फेशियल जो रिजल्ट जो दह गुना वी वे तो बिल्कुल तुम्हारी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी वाइटमिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स के एड कयो वयो है जी, तुम्हारी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की रिजल्ट दह गुना ज्यादा वी वे। Oh, what do you

सो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिन जे इस्तेमाल में सफ़ा भलो रिज़ल्ट ॾे पई। ॿ रातियूं लॻायो ऐं तव्हां पंहिंजे चहिरे खे ॾिसो, चवंदा वाह वाह वाह वाह, पहिरियां छो न पिया वठूं, पहिरियां सिदरा भाॼी जी ॻाल्हि छो न पिया वञो। खैर हाणे बि देरि कोन थी आहे, तव्हां वञो अगरि तव्हांजे घर में शादियूं थियण वारियूं आहिनि। वैसे हाणे मौसम अहिड़ो अची वियो आहे त सभिनी जे घर में तकरीबन शादियूं थियण वारियूं हूंदियूं, त तव्हां बि जल्दी जल्दी कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। खूबसूरत थियण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, अगरि तव्हां खूबसूरत थियण चाहियो था ऐं चाहियो था त कोई अहिड़ो प्रोडक्ट असां वटि हुजे जेको असांजी खूबसूरती में चार चंड लॻाए छॾे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ज़िंदाबाद आहे बाबा, छो था घबरायो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, को टेंशन बि न त भई असांजी स्किन ख़राब थींदी, इहे थींदो, हो थींदो, कुझु बि न थींदो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, सफ़ा वीआईपी चिकना चिकना गोरा चिटा थी वेंदो। सो लॻायो ऐं लश्कारा मारियो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां। अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे, मां माशाल्लाह केॾी बकबक कंदी आहियां। हांजी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश भी तव्हां लॻाए सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश तव्हांजे अगरि अञा ताईं एरिया में अवेलेबल न थियो आहे, त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो। ऐं डी स्किन जो फेस वॉश भी तव्हां इस्तेमाल कयो, ॿई चीज़ूं लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। अच्छा उमीद भाई के हिते ही शमन जो गानो हले पियो, बाबा तव्हां असांखे मीरपुर खास मां ॿुधो पिया, शमन जो गानो एंजॉय कयो। गदा हुसैन मल्हा लिखते हैं कि बाजी देख ले आपको मैंने चार साल बाद कोई फरमाइश की थी, वो भी नहीं। अरे भाई किसने कहा कि मैंने आपकी फरमाइश पूरी नहीं करी, मैं चली गई प्रोग्राम करके, आपका गाना नहीं चला। सबर त कयो, रुको जरा, सबर करो, तव्हांजो गानो आहे लिस्ट में, तव्हां ॿुधंदा गदा भाई, एॾी तकड़ न कंदा कयो, जल्दबाज़ी भली न हूंदी अथव। और कहते हैं डेडिकेट शॉपकीपर मोहम्मद बख्श मल्हा ज आंदल खान मल्हा बाजी, उसकी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और पूरे विलेज वालों को डिस्काउंट पर दे रहा है। माशाल्लाह क्रीम बहुत बहुत खूब है आपकी तरह, क्या बात है, ये तो भाई मेरी तारीफ हो गई। गदा भाई बहुत शुक्रिया, आप इस्तेमाल कर रहे ही नहीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, मुझे ये जरूर बताइएगा। अच्छा रिजवान अली भी हमारा शो सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं भाई साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। और स्मार्टू कहते हैं वाह वाह वाह, जुगानो ये उधार जाई तो। और रशीद खोसो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं और मैं इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, नाइस प्रोग्राम, आपको सलाम, सारे दोस्तों को सलाम। वैसे रशीद भाई क्रीम का नाम तो लिखे, कौन सी क्रीम लगाते हैं। और जी हमारे साथ हैं किशोर भाई, बंद कटी बेटा आयो। खिलो खिलो बाबा, अल्लाह सही करे हमेशा ये तव्हांजे लबन ते खिल जेका सलामत हुजे। बिलाल अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी आप मोहतरमा, सफ़ा मज़े में, तव्हां पंहिंजा हाल अहिवाल जो कीअं आहियो, ठीक ठाक आहियो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो था कोन। सुमाटू कहते हैं कि सदरा आप झगड़ा भी करती हैं, आप तो मासूम बच्चा हो। हाँ पर मासूम बच्चा भी तो कदें कदें झगड़ा करना है ना, इट्स नॉर्मल। ऐं तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम न लॻाई त पोइ जेड़ा थींदा, वॾा जेड़ा थींदा। अच्छा तारिक भाई भी हमारा शोर सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम तारिक भाई। बिलाल कहते हैं सिक बंद करायो आॼु, भलो कयव अची वियो। और हिदायतुल्ला कहते हैं कि सदरा आंगन ड्रामे में वो सजल अली कब आएगी, वो थोड़ा लास्ट में आएगी, अभी तो ये चल नहीं दे, मतलब कुछ लग रहा है कि चार पांच एपिसोड्स आए हैं तो वो लास्ट में आएगी तकरीबन, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप ऐसा कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए।

बहुत खूबसूरत गाना गदा भाई की चॉइस के ऊपर हम एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कुट्टी की खाई न लगे जो।

भाई क्या हो गया है, सही नहीं आ रही क्या नश्री यादव? FB पर भी सही नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। वैसे ये सही बात है, जो लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं, सताते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आप सोचते हैं कि भाई ये हमारा रिश्ता है, इस रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो कभी कभी रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि सिर्फ अना और खामोशी से भी टूट जाया करते हैं। और एक तरफ दिल चाहता है कि बात खत्म ना हो, दूसरी तरफ जबा पर सिर्फ एक लफ्ज भी नहीं आता, माफ कर दो। ये कहना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और हर बहस जीतना भी तकरीबन जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम बहस करेंगे अपने किसी प्यारे से, किसी अजीज से, या जिसे हम शायद खोना नहीं चाहते, तो जब आप बहस करते हैं ना, तो वो तमाम चीजें जब आप कर रहे होते हैं, तो वो उस इंसान की लाइफ में जो होता है ना, आपकी वैल्यू को इतना कम कर देते, इतना जीरो कर देते हैं कि फिर आप बैठकर सोचते हैं कि मैंने क्या किया था। आपने बहस करी थी तो जब रिश्ते होते हैं ना, उनको संभालने के लिए कभी खामोश रह जाना और कभी कुछ ना कहना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनको हम खोना चाहते हैं, जिनके साथ नहीं रहना चाहते, फिर तो आप जरा रज के बहसें कीजिए कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, रिश्ता बचाना चाहते हैं तब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो जरूरी होता है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि भाई एक रिश्ता है जिसके अंदर आप घुट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई उस रिश्ते को बचाना है, तो ये वाली सिचुएशन भी आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। और आपकी जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों की जिंदगी को एकदम से बदल कर रख देगा। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है, मेडिकेटेड फार्मूला है, स्पेशल वाली चीज इसके अंदर एड की गई है, तो आप लोग घर बैठे मुनासिब सी कीमतों के अंदर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि भाई आप इस्तेमाल करने के बाद कहेंगे कि आए हाय मजे आ गए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए, चाहे आप मर्द हंस आते हैं।

अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर जी, सदा खुश रहें और खुश आमदीद, मुस्कुराती रहें, आमीन। और सिस्टर अलन फकीर का सॉन्ग प्ले करें, सो नाइस ऑफ यू भा, मां कोशिश क्या थी ताजी पसंद इन जा गाना आलाइंदा जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा तारिक भाई कहते हैं कि डिसेंट ब्यूटी पार्लर जेकब आबाद में है, हमारी व्हाइट एज क्रीम और डी स्किन सेल कर रहे हैं। अच्छा जेकब आबाद में जितने भी लोग सुन रहे हैं वो डिसेंट ब्यूटी पार्लर से जाकर भी परचेज कर सकते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बिलाल डिस ये न कर बाबा, ये न कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी अचो। उम्मीद भाई कहते असान क्रीम यूज को कई है, सजा बाजी जुलरी मीरपुर खास का उम्मीद लीलाशारी भा कर आई तमाम जिले ऐसा मेरे को खास में अवेलेबल भी कराई छी है। रशीद भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कई है, ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करना रहो। किशोर भाई कहते हैं कि आमीन हान अल्लाह सही जरूर सोचेंगे। वाकई वाकई मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। और कहते हैं हाँ जी वो सही है ड्रामे की बात कर रहे हैं, ओके ओके। बिलाल के दिन मोहतरमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठा तो तमाम खूबसूरत थी वेंदा, तमाम सोना थी वेंदा, तमाम जे चेहरे ते जेके रिंकल्स अची वया आहिनि, एकनी निशान आहिनि या कुछ भी आहे, रंगत सांवरी थी वया आहे त उहा चिटी थी वेंदी, गोरी थी वेंदी, तमाम सोना थी वेंदा, समझो था कुल मिलाए कटे सटे। असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था।

क्या बात है। बाकी साईं जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त तव्हां ते बि बमा आईनो आशिक थी वेंदो। तव्हां एतिरा सुहिणा थी वेंदा, माण्हू तव्हां खां पुछंदा ॾिसो त सही हाल अहिवाल एतिरी ख़ूबसूरती कान्हे आंदी अथव। ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा असांजी पूरी टीम महिनत करे पई तव्हां जे लाइ हर जॻह ते वञी वञी उहो अवेलेबल कराइनि पिया। तव्हांजो फर्ज़ बणिजे थो त तव्हां ट्राए करे ॾिसो। ट्राए करे ॾिसंदा तव्हां ख़बर पवंदी त एतिरो सिदरा आख़िर मथो छो थी हणे। छो त बाबा ज़ाहिर ॻाल्हि आहे प्रोडक्ट में दम आहे ऐं प्रोडक्ट कम जो आहे, तॾहिं तव्हांखे ॿुधायूं था, न त छो ॿुधायूं। आहे सोचण वारी ॻाल्हि। अच्छा रमज़ान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ दर्द दिल के थी चंदा मैं भी देखती हूँ ड्रामा। जी जी देखी देखी अच्छी बात है। अच्छा हाशिर अजीम कहते हैं मगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं। आपको किसने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? पता नहीं कैसे कैसे चीजों के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। क्या जानते हैं आप। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते प्रोग्राम देखो और फरमाइश देखो। वही मैं सोचती हूँ कभी कभी लोग ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश करते हैं। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते प्रोग्राम देखो और फरमाइश देखो। वही मैं सोचती हूँ कभी कभी लोग ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश कर देते हैं कि मैं सोचती हूँ कि भाई साहब

चाचा अगर सुन रहे हैं तो वेलकम कहते हैं उनको भी। अच्छा बिलाल कहते हैं सुना थी विंदा सिंह डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करे पो छाती तो पो तुम्हारी शादी थी वेंदी। यस फुल एंड फाइनल फुल एंड फाइनल समझो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जिन्हें इन शादी कोन थी तुम्हारी शादी थी वेंदी। और बाकी जिनके घर में शादी थियण वाली तो वो भी ट्राई करे सकन था। छो तो तुम बाबा ये फेशियल या ब्लीचिंग के चक्कर में न पो तुम्हारे हथ में हाँ एडो मैजिकल प्रोडक्ट अची वो है जो तुम्हारी खूबसूरती के बधाई छी तुम्हें सोनो प्यारो गोरो चिटो बनाए छी। सो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लाजमी ट्राई कर दिसो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूलो है तो टेन चार महीने तो असि स्किन खराब थी वेंदी या सेंसिटिव स्किन से लगाए सूँ या न लगाए सको तुम हर स्किन के मथा लगाए सको था हर कोई लगाए सके तो टेंशन फ्री थी करे लगाए सको था। टोमाटो कहते हैं कि सेठ ये सॉन्ग किसका फेवरेट है मास्टर मंसूर का ये मैंने एवं ही लगा लिया था किसी ने मास्टर मंसूर के गाने की फरमाइश कर दी तो उसके बदले में

हजार भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। हजार भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए।

बाबा शादी थी वेंदी दिल नंढी न कयो, तव्हां डीस्किन ब्यूटी क्रीम त इस्तेमाल कयो, पोइ चओ ॿियो ॻाल्हियूं वरी पोइ कंदासीं, लॻायो त सही। ख़बर पएव त डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो केॾो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले पियो। ऐं डीस्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न त उहा तव्हां हर मौसम में बि लॻाए सघो था, ऐं राति जो टाइम लॻाईंदो जंहिं महिल तव्हां सुम्हण वञो। लॻाइण खां पहिरीं तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो डी स्किन जे फेस वॉश सां, सही आहे। जॾहिं तव्हां इहे सभु चीज़ूं कंदा पोइ तव्हांखे अहिड़ो वाह वाह रिज़ल्ट मिलंदो, वाह वाह रिज़ल्ट, समुझो था। सभु तव्हांखे ॾिसी पुछंदा त छा पिया लॻायो, छा पिया कयो, ॾाढा इहो महांगो फेशियल कराया आहियो, पर तव्हां हुननि खे चइजो बाबा मुनासिब क़ीमतुनि में असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली आहे जंहिंजो इस्तेमाल करे असांखे फेशियल वारा रिज़ल्ट मिली विया आहिनि। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हांजे ख़ूबसूरत फ़ाइदेमंद। जी मैं वही सोच रही थी ये गाना कौन से गाने की कट पर है लेकिन ये आपने बता दिया आपके प्यार में ये बात है, ये गाने ना सुनो तो फिर गाने सारे भूल गए हैं।

अच्छा, दर्दे दिल कहती है कि जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और वजह आप हो। अच्छा ओके, समझ गया समझ गया।

दी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर हम निखर ने तो आप भी लगाइए, आप भी निखर जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाजत। वही तहां से मुझे मुलाकात है पई जी पंज बजे वाले प्रोग्राम में। तो पंज बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करना आई किथे का गलती थी, तो माजरत कयूं था। तो फीडबैक रही थी वो गानों रही थी सभी का माजरत कयूं था। सो मोकलानी ना ही बाबू सिंह सलामत साल सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

गवर्नर राव वजीर आजम शहबाज शरीफ जी दारत हेठ केपी के सूरतयाल थींदो। वजीर आजम हाउस में थींदड़ इजलास में वफाकी वजीर ऐं गरू वज़ारत जा अमलदार शरीक ईंदा। केपी के सूरतयाल बाबति अहम फैसला कया वेंदा। एमरजेंसी लॻाइण जी सूरत में मंजूरी लाइ काबीना जो इजलास बे तलब कयो वेंदो। हर वक़्त इंतिशार ऐं गारियुनि जी सियासत नथी हली सघे। केपी में कुझु बि सुठो न थी रहियो आहे। पीटीआई पाबंदी मड़ियल टीम बणियल आहे। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त केपी के हुकूमत पुलिस खे मज़बूत करण लाइ तयार न आहे। सेफ सिटी कैमराऊं बि न लॻाए रही आहे। सूबो बदमनीअ जे इंतिशार पखेड़े रहिया आहिनि। 13 सालनि दौरान पीटीआई केपी के जी ख़ूबसूरती बि ख़तम करे छॾी आहे। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज जहिड़ी कंहिं बि कदम जे हक़ में न आहे। पीपल्स पार्टी केपी के में को बि गैर आइनी कम न थियण ॾींदी। पीटीआई खे सोचणो पवंदो त उहा मुल्क केॾां वठी वञी रही आहे। सखर में वॾे वज़ीर चयो आहे त सूबे में कणक जी खोट न आहे। अटे जे क़ीमतनि में वाध जा कारण कणक जी खोट न पर तेल जे अघनि में वाध ऐं ॿिया आहिनि। वॾे वज़ीर खैरपुर में रियासत जे अॻूणे वाली मीर मुराद अली टालपुर जे वारसनि सां ताज़ियत बि कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नेशनल आई टी पार्क जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आई टी पार्क नौजवाननि लाइ तरक़ी खोलींदो। नेशनल आई टी पार्क मुल्क जी तरक़ी ऐं खुशहाली लाइ बि अहम साबित थींदो। आई टी पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं आई टी जे शोबनि में अहम अॻुवराई आहे। ॾखण कोरिया जे तजुर्बे जे नतीजे में लाहौर में पहिरियों भेरो एसी बसिस आयूं। टेक्नोलॉजी जी दुनिया में महारती असल ताक़त आहे। सऊदी इतिहादी फ़ौज आहे यमन में हुसैन जे थाकनि ते हमला। 136 फ़ौजी हथफनि खे निशानो बणाइण जी दावा। सऊदी इतिहादी फ़ौज जो चवण आहे त हमलनि जो मक़सदु हुसैन जे बैलिस्टिक मिज़ाइलनि वारी सलाहियत खे ख़तम करण आहे। हुसी बाग़िनि हमलनि जी तसदीक करे छॾी। अमेरिका रूस खां डीज़ल वठण जो ऐलान करे छॾियो। रूसी डीज़ल ते लॻायल पाबंदी बि मुअतल करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर प्यूटन सां फोन ते राब्ते में ॻाल्हि ॿोल बाद रूस खां तेल वठण वारे मुआहदे जो ऐलान कयो। ट्रंप चयो आहे त रूस जल्द अमेरिका खे 30 लख टन डीज़ल फराहम कंदो। यूक्रेन सदर जे अमेरिका ते रूस खां डीज़ल वठण ते तनक़ीद। सदर चयो आहे त अमेरिकी फ़ैसिलो यूक्रेन जंग में वाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां शुगर जे माहिर डॉक्टर जी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ पारां शुगर जी रोकथाम लाइ जाम हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। वज़ीर आज़म चयो आहे त शुगर जहिड़े मर्ज़ खे रोकण लाइ आगाही ॾियण सां गॾु तिबी तहक़ीक़ खे बि तेज़ कयो वञे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी पारां तरक़ियाती मनसूबनि जो दौरो। मोहसिन नक़वी ऐं तलाल चौधरी मार्गलार रोड जे मोटरवे ताईं वाद में संघ जो जाइज़ो वरितो। मनसूबनि ते डबल शिफ्ट में कम जारी रखण ऐं कम तेज़ करण जी हिदायत। मोहसिन नक़वी चयो आहे त रिथा सां इस्लामाबाद जे शहरनि खे मुतबादिल रस्तो मिलंदो। मुस्लिम लीग नून जो सदर नवाज़ शरीफ लंडन रवानो। अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ लाहौर खां लंडन लाइ रवानो थियो। नवाज़ शरीफ ते बि मुआइनो कराईंदो। टंडो मोहम्मद ख़ान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बेज़ाबतगी ऐं मुबिना करप्शन ख़िलाफ़ शागिर्दनि जो कराची ॾांहुं पैदल मार्च जारी आहे। गुज़िरियल ॾींहुं हैदराबाद खां निकितल पैदल मार्च जो टंडो मोहम्मद ख़ान में सफ़र जारी। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो पैदल मार्च सजावल ऐं ठठे खां थींदो कराची पहुचंदो। पिंगरियो में शादी सब डिवीज़न जो पाणी बंदि करण ख़िलाफ़ टेप जे आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ज़रिए पाणीअ जी बंदिश ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज करे धरणो हयो। आबादगारनि मौजूद पाणी बंदि थियण सबबि बीठल फसुल सड़ी रहिया आहिनि। नवां फसुल बि नथा पोखे सघूं। पाणी खोले परेशानी ख़तम।

0: 構いるね。मिठाणी भरसा नवा जतोई में चोरी की कोशिश दौरान भागन के सुजाग थे चोर की फायरिंग ब बाल सख्त जख्मी नवा जतोई में चोर राशिद जरवार के घर में दाखिल थे तो भाग्या सुजाग थी पाया चोर की फायरिंग में अनमोल जरवार ए सुरैया जख्मी थी पयू गणती वाली हालत में अस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर टो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमज़ोर मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
5: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदी निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43842
2: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐ हां गोठन शहरन ऐ परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ऐ पेंजे इश्तियार लाइन लाए
1: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578
1: जी हां बुड़ी 331525786
2: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि आरडन जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़न जो मुफ़्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 147 बट

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेस, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी, औलाद जो

0: थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजनि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

केपीए जी सूरत हाल ते सदर आसिफ अली ज़रदारी जी सदारत हेठ आम इजलास कुछ देर में शुरू थियण वारो। ऐवान सदर में थींदड़ इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाक वज़ीर ऐं कानून माहिर शिरकत कंदा। कानूनी माहिर केपीए में आइनी ऐं कानूनी सूरत हाल ते ब्रीफिंग ॾींदा। पीटीआई जे रवैये जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। ज़रियनि जो चवण आहे त केपीए जे मौजूदा सूरत हाल ते गौर करण बाद अहम फ़ैसिला कया वेंदा। हर वक़्त इंतिशार ऐं गारनि जी सियासत नथी हली सघे। केपीए में कुझु बि सुठो नथी रहियो आहे। पीटीआई पाबंदी मड़ियल टीटीपीअ जी बी टीम आहे। सुध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अतातड़ चयो आहे त केपी हुकूमत पुलिस खे मज़बूत करण लाइ तयार न आहे। सेफ सिटी कैमराऊं बि न लॻाए रही आहे। सूबो बदमनीअ जे वरचड़ियल आहे ऐं ही इंतिशार पखिड़े रहिया आहिनि। 13 सालनि दौरान पीटीआई केपीअ जी ख़ूबसूरती बि ख़तम करे छॾी आहे। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज जहिड़ी कंहिं बि कदम जे हक़ में न आहे। पीपल्स पार्टी केपीए में को बि गैर आइनी कम थियण न ॾींदी।

0: सोचणो पवंदो त उहो मुल्क केॾां वठी वञी रहिया आहिनि। सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त सूबे में कणिक जी खोट न आहे। अटे जे क़ीमतुनि में वाध जा कारण कणिक जी खोट न पर तेल जे अघनि में वाध ऐं ॿिया आहिनि। वॾे वज़ीर खेरपुर में रियासत जे अॻूणे वाली मीर मुराद अली टालपुर जे वारसनि सां त्यादत बि कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नेशनल इफ्तिताह करे छॾियो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त आईटी पार्क नौजवान लाइ तरक़ीअ जा नवां दग खोलींदो। नेशनल आईटी पार्क मुल्क जे तरक़ीअ ऐं खु़शहालीअ लाइ बि अहम साबित थींदो। आईटी पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं आईटी जे शोबनि में अहम अगबराई आहे। ॾखिण कोरिया जे तजुर्बे जे नतीजे में लाहौर में पहिरियों भेरो ईसी बसिस आयूं। टेक्नोलॉजी जी दुनिया में महारत ई असल ताक़त आहे। सऊदी इतिहादी फ़ौज जा यमन में हुसन जे थाकनि ते हमला। 136 फ़ौजी अज़फ़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। सऊदी इतिहाद फ़ौज जो चवणु आहे त हमलनि जो मक़सदु हुसन जे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स वारी सलाहियत खे ख़तम करणु आहे। हुसी बागन हमले छॾी। अमरीका रूस खां डीज़ल वठण जो ऐलान करे छॾियो। रूसी डीज़ल ते लॻल पाबंदियूं बि मुआन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर प्यूटन सां फोन ते ॻाल्हि ॿोल बाद रूस खां तेल वठण वारे मुआदे जो ऐलान कयो। ट्रंप चयो आहे त रूस जल्द अमरीका खे 30 लख टन डीज़ल फराहम कंदो। यूक्रेनी सदर जी अमरीका ते रूस खां डीज़ल वठण ते तनक़ीद। ज़ेलेंस्की चयो आहे त अमरीकी फ़ैसिलो यूक्रेन जंग में वाद जो सबबु बणबो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अज़रबैजान जे सदर सां फोन ते राब्तो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े बारमा में सीटीडी जी कार्रवाई। 10 दहशतगर्द मारिजी विया। सीटीडी बलोचिस्तान मूजिबि बारखा में कई वई आहे। ऑपरेशन दौरान 10 दहशतगर्दनि जे जनम भेड़ो कयो वियो आहे। कार्रवाई दौरान सीटीडीअ जा 2 अहलकार ज़ख़्मी थी पिया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी पारां तरक़ियाती मनसूबनि जो दौरो। मोहसिन नक़वी ऐं तलाल चौधरी मारगला रोड जे
1: अरे वाह, सेम सेम शूज सर, सेम सेम।
2: हाँ, वेरी एक्सपेंसिव शूज। तुमने कोई सेल वेल लगी हुई थी क्या?
1: नहीं सर, जब पहले ही होलसेल प्राइस थे तो सेल की किसको जरूरत है।
2: होलसेल कहाँ?
0: जो कराची ॾांहुं प्यादल मार्च जारी। गुज़िरियल ॾींहुं हैदराबाद खां निकतल प्यादल मार्च जो टंडरो मोहम्मद खान में सफ़र जारी। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटीअ जो प्यादल मार्च सजावल ऐं ठटे खां थींदो कराची पहुचंदो। पंगी सब डिवीज़न जो पाणी बंदि करण ख़िलाफ़ टेल जे आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि ज़रई पाणीअ जे बंदिश ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि मूजिबि पाणी बंदि थियण सबबि बीठल फसल सड़ी रहिया आहिनि। नवां फसल बि नथा पोखे सघूं। पाणी खोले परेशानी ख़तम कई वञे। पीर वसण भरिसां झेड़े में मारिजी वियल नौजवान जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। ॻोठु सुलेमान उनड़ में उनड़ बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े में ज़ख़्मी थियल नौजवान फोत। वारसनि लाश रखी मेराण हाईवे ते कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन चयो त पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण में नाकाम वई आहे। बबरलो में 40 पढ़ंदड़ जूनियर साइंस टीचर उमेदवारनि जो एहतजाज। उमेदवारनि बबरलो बाईपास ते एहतजाज कयो। नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो। छाछरो में सिंध पुलिस भर्तीअ लाइ टेस्ट पास वेटिंग उमेदवारनि जो एहतजाज। छाछरो ऐं डायलीअ जे पुलिस वेटिंग उमेदवार आफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। ठारू शाह में मेंदीअ जे आबादगारनि जो वापारियुनि ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। घटि अघु ॾियण जो इल्ज़ाम। मेंदीअ जे फसल खे बे एहतजाजनि बाहि ॾेई साड़े छॾियो। आबादगारनि चयो त वापारी 6 रुपया मण वारी मेंदी 1500 रुपयनि में ख़रीद करे रहिया आहिनि। वापारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मेंदीअ जो मुनासिब अघु ॾियारियो वञे।
3: न्यूज़।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज करती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
9: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
11: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए

0: स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 का 6:30 वगे शाम ताई। नोट असा वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज, बार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वने थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 03125252786।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अरे नहीं, खुश और बेरोनो की स्किन हर इमेज लाइट था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चार रंग की खूबियों एंड कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी की लॉक करे एंड चार रंग की खूबियों जिंद में फाइन लाइन एंड झुरन की घट कर इसकी घट करे सिर्फ ट्रिल ईहन में जिंद के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई और औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे

0: ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो है यादि रखंदा। दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस: दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक, मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट: सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट: असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस: मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, तव्हां जे पतली जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टर जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टराणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
8: तो पोए GFM 90.4 FM रेडियो आए,
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
8: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
5: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन खे लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
0: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
8: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842। अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
1: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 बजे खां 10 बजे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 बजे खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी,
6: गर्मी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
8: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरक्यो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वने जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सबनी मरीजन के लेंसेस खादो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियों मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खणी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदर रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
5: 0331-252-5786।
3: जी हाँ बुड़ी 361-525-786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: मातली आसपास जी आवाम अलै खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
3: खुशखबरी, खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध, फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: जी कीमतुनि में वाध जा कारण कणक जी खोट न पर तेल जे अघनि में वाध ऐं ॿिया आहिनि। वॾे वज़ीर खैरपुर में रियासत जे अॻूणे वाली मीर मुराद अली टालपुर जे वारसनि सां मुतासिर कई।
1: Laugh Beauty Cologne Talc जिसे लगाने के बाद किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं। Laugh Beauty

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-3241-230।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
8: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
6: 0331252578
8: जी हाँ बुड़ी 331 525 786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अरे न खुश ऐं बीरोनो की स्किन हर इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिन ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजनि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज़ पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूदु न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
6: छा आवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
7: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: aba.
1: Haydi.
2: Tomun kimisayo a. Param khana tho visri.
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
3: ब्रॉट टू यू बाय

केपी में एमरजेंसी आखिरी ऑप्शन आहे। असांजी का बि ज़ाती अनान आहे। असांजे नारो को पाकिस्तान ऐं मुल्क जो मुफ़ाद आहे। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त क़ौमी पॉलिसी ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि, माण्हुनि खे भड़कायो पियो वञे। लॻे थो त को बि ऑप्शन नाहे बचियो, आइनी तौर आख़िरी ऑप्शन इस्तेमाल कयो पियो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो आहे त केपी वासियुनि खे दहशतगर्दनि हवाले कयो वियो आहे, केपी वासियुनि खे दहशतगर्दनि हवाले थियण न ॾिनो वेंदो। सदर गवर्नर जी रिपोर्ट ते मुतमइन थियण जी सूरत में या बिन्ही अहवाननि जे धार धार ठहराउनि जी सूरत में पधिराई जारी करे सघे थो। सदर सूबाई हुकूमत जा कुझु या सभई फर्ज़ पाण संभाले सघे थो या वरी गवर्नर खे उहे फर्ज़ अदा करण जी हिदायत करे सघे थो। आइन जे आर्टिकल 232 मूजिब वफ़ाक ऐं सूबनि जे इख़्तियारनि जे हवाले सां आइन में मौजूद एमरजेंसी जे तरीक़ेकार मूजिब सूबाई सभिनी

0: जा अख्तियार पार्लियामेंट जरिए या इस्तेमाल करे सकजन था। पधराई जे बिन महीननि अंदरि मंज़ूरी ज़रूरी आहे। एमरजेंसी दौरान पार्लियामेंट खे सूबे बाबति कानून साज़ी जो बि इख़्तियार हासिल हूंदो।
1: पाकिस्तान की कुछ पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई काम हो, गहराएंगी तो कभी भी नहीं चाहेगी होता चला हो। ये हमारी है कि करना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क पे जब दहशत गर्दी इतनी फेस कर रहे हैं वो किस तरफ से कर रहे हैं। दहशत गर्दी से जो हमें नुकसान हुआ है हमें पता।
0: पीपल्स पार्टी गवर्नर चेड़े कें भी कदम के हक में न है। पीपल्स पार्टी एपी में को भी गैर आइनी कम न थन दी। पीटीआई के सोचो पवन तो हुआ मुल्क केदा वी वही रही है। चक्कर में मीडिया से गाले वे वजीर मोहम्मद अली शाह तो सूबे में कणक की खोट न है। अटे की कीमत में वाद जा करण कणक की खोट न पर तेल के अघन में वाद बयान। वे वजीर खैरपुर में रियासत के अगूणे वाली मीर मुराद अली टालपुर के वारिसन से ताजियत भी कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नेशनल आई टी पार्क जो इफ्तिताह करे छो। तकरीब के खिताब कन्दे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहिए तो आई टी पार्क नौजवान लाए तरक्की जा नवा दग खोलिंदो। नेशनल आई टी पार्क मुल्क की तरक्की ए खुशहाली लाए भी अहम कदम साबित थींदो। आई टी पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई टी के शोबन में अहम अगभराई है। दक्षिण कोरिया के तजुर्बे के नतीजे में लाहौर में पहरियों भेरो एसी बसेस आयू। टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत ही असल ताकत है। सऊदी इतिहादी फौज जा यमन में हुसैन के ताकन से हमला 136 फौजी हदफन के निशानों बनने की दावा। सऊदी इतिहादी फौज जो चवण है तो हमलों जो मकसद हुसैन के बैलिस्टिक मिसाइल्स वारी सलाहियत के खत्म करना है। हुसी बागियन हमलों की तस्दीक कर छी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: अरे न खुश बीरोनो की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चावरन जो खूबियों ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रीन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उनसा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं औरत عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
8: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے کے ڈی مریضن جو مفت علاج کندی
7: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-32-41-230
9: खुशखबरी खुशखबरी अवाजी पंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐ मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐ MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐ हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
11: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वे जैमें अखियन जी बीमारियों जा माहिर डॉक्टर उन्हें टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सको था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिन्यू वेंदियों मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो थाव खी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
12: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
13: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
14: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
13: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
14: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
13: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
13: 0331252578 6।
14: जी हा, 2315525786।
13: GFM रेडियो नेटवर्क,
14: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला है ऑपरेशन 13 ए 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वने, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सको था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदू। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुन जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन।
2: मां आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347 3141 230।
6: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
11: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
11: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0125-25786।
11: जी हाँ, 3135-25786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क
11: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 8 p.m. This transcript is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: को मेरी न्यूज़ है के पी जे वडे वजीर सुहेल आफरीदी की सदारत हेठ पिशावर में पार्टी जो अहम इजलास लांग मार्च समेत वफाकी हुकूमत से जारी चिकताण से हो पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है त केपी ते वधीक तजुर्बा न थियण घुर्जन गालियन जी गुंजाइश मौजूद आहे मौके मिलन घुर्जे ऑप्शन है असाजी का भी जाती अनाना है असाजी अनारों को पाकिस्तान है मुल्क जो मुफाद है ममलकती वजीर तलाल चौधरी है कौमी पॉलिसी खिलाफ गाल पी वन मानन के भड़काया पे वन लगे तो को भी ऑप्शन ना बचो आईनी तौर आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल कयो पे वन वफाकी वजीर अमीर मुकाम चयो आहे त केपी वासियन के दहशतगर्दन हवाले कयो वियो आहे केपी वासियन के दहशतगर्दन हवाले थियण न ॾिनो वेंदो सदर गवर्नर जी रिपोर्ट ते मुतमइन थियण जी सूरत में या बिन्ही अहवाननि जे धार धार ठहराउ जी सूरत में पधराई जारी करे सघे थो सदर सूबाई हुकूमत जा कुझ या सभई फर्ज पाण संभाले सघे थो या वरी गवर्नर खे उहे फर्ज अदा करण जी हिदायत करे सघे थो आइन जे आर्टिकल 232 मूजिब वफ़ाक ऐं सूबनि जे इख़्तियारनि जे हवाले सां आइन में मौजूद एमरजेंसी जे तरीक़ेकार मूजिब सूबाई असेंबली जा इख़्तियार पार्लियामेंट ज़रिए या इस्तेमाल करे सघजनि था पधराई जे ॿिन महीननि अंदरि मंज़ूरी ज़रूरी आहे एमरजेंसी दौरान पार्लियामेंट खे सूबे बाबति कानून साज़ी जो बि इख़्तियार हासिल हूंदो
6: पाकिस्तान की कुछ पार्टी तबदीली नहीं चाहिए तो ऐसा कोई काम हो कह रहे हैं तो कभी पता चला हो ये हमारी है कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क को जब दहशतगर्दी इतनी देर लेगा दहशतगर्दी से जो हमें नुकसान हुआ है हमें पता
5: पीपल्स पार्टी गवर्नर चेड़े कें भी कदम के हक में ना है पीपल्स पार्टी केपी में को भी गैर आइनी कम न थियण दींदी पीटीआई के सोचण पवंदो त हुआ मुल्क केॾा वठी वञी रही आहे चक्कर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर बादल शाह चयो आहे त सूबे में कणक

खोट न आहे। अटे जी कीमत में वाध जा कारण कणक जी खोट न पर तेल जे अघन में वाध ऐं बिया आहिनि। वॾे वज़ीर खैरपुर में रियासत जे अॻूणे वाली मीर मुराद अली टालपुर जे वारिसनि सां ताज़ियत पई कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इस्लामाबाद में नेशनल आईटी पार्क जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तकरीब में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त आईटी पार्क नौजवाननि लाइ तरक़ी जा नवा दग खोलींदो। नेशनल आईटी पार्क मुल्क जी तरक़ी ऐं टेक्नोलॉजी जी दुनिया में महारत ई असल ताक़त आहे। सऊदी इतिहादी फ़ौज यमन में हुसैन जे थाकनि ते हमला 136 फ़ौजी हदफ़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। सऊदी इतिहादी फ़ौज जो चवण आहे त हमलनि जो मक़सदु हुसैन आहे। हुसी वाक़ियनि हमलनि जी तस्दीक करे छॾी। अमरीका रूस खां डीज़ल वठण जो ऐलान करे छॾियो। रूसी डीज़ल ते लॻल पाबंदियूं बि मुअतल करण जो ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प रूसी सदर प्यूटिन सां फोन ते ॻाल्हि ॿोल बाद रूस खां तेल वठण वारे मुआदे जो ऐलान कयो। ट्रम्प चयो आहे त रूस जल्द अमरीका खे 30 लख टन डीज़ल फराहम कंदो। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जी अमरीका ते रूस खां डीज़ल वठण ते तनक़ीद। ज़ेलेंस्की चयो त अमरीकी फ़ैसिलो यूक्रेन जंग में वाद जो सबबु बणियो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जो आज़रबैजान जे सदर अलहाम अलियोफ सां फोन ते राब्तो। बेतरफ़न लागापन समेत ख़ते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म जी दरख़्वास्त ते आज़रबैजान जो आसान ख़िदमत मर्कज़नि लाइ मदद फराहम करण ते इतफ़ाक़। ॿिन्ही अॻवाननि जो राब्तनि ख़ते जे सूरतहाल ते राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरत तुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख अखियन जे सभिनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अलीशेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086-3163।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ॿुधायो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2-331-5250-786।
4: जीए FM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख भिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजनि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
10: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

पीपल्स पार्टी ऐं न्यू लीग ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी लॻाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। हतमी मंज़ूरी सुभाणे वफ़ाक़ी काबीना खां वरिती वेंदी। सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ जा इजलास बि 13 अक्टूबर ते तलब करण जो फ़ैसिलो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरतहाल ते सदर आसिफ ज़रदारी जी सदारत हेठि अहम इजलास। वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़ीरनि, अटॉर्नी जनरल ऐं पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻवाननि जी शिरकत। ऐवान सदर पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त इजलास में मुल्क जी सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वियो। क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा अलॻि अलॻि इजलास 13 अक्टूबर ते सॾाइण ते इतफ़ाक़ थियो आहे।

जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात थे पीजी सूरतहाल ते तफसीली गालियों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के उम्र जो मुबारकों भी दिनों जरिए जो चवण आए तो मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म के केपी वारी सूरतहाल जो सियासी हल कढ़ण जो मशवरो दिनों है।

0: ताण ते गौर विचार कयो वियो।
1: केपी में इमरजेंसी आखिरी ऑप्शन है। असाजी का भी जाती अना ना है। असाजी अना रुगो पाकिस्तान ने मुल्क जो मफाद है। मुमलकती वजीर तलाल चौधरी चयो है तो कौमी पॉलिसी खिलाफ गालियों कयूं पे वन मारन के भड़कायो पे वने लगे तो को भी ऑप्शन ना है बचो।
2: ये खूबसूरत लम्हा शुरू हुआ एक अग्रीमेंट से। इन्होंने प्राइस ऑफर की, ड्राइवर के लिए भी ठीक थी, बस इतना ही करना होता है अपनों के लिए थोड़ा ज्यादा बचाने के लिए। इन ड्राइव, इसे कहते हैं फेयर।
0: सदर गवर्नर की रिपोर्ट से मुतमिन थियण की सूरत में या बिन्हीं अहवानन के धार धार ठहराण की सूरत में पधराई जारी कर सकजे तो सदर सूबाई हुकूमत जा कुछ या सभी फर्ज पान संभाले सके तो या वरी गवर्नर के उहे फर्ज अदा करण की हिदायत कर सके तो। आइन के आर्टिकल 232 मूजिब वफाक ए सूबन के अख्तियार के हवाले से आइन में मौजूद इमरजेंसी के तरीकेकार मूजिब सूबाई असेंबली जा अख्तियार पार्लियामेंट जरिए इस्तेमाल कर सकजन था। पधराई के बिन महीनों अंदर मंजूरी जरूरी है। इमरजेंसी दौरान पार्लियामेंट के सूबे बाबत कानून साजी जो भी अख्तियार हासिल हों।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय एटेक्स पाकिस्तान।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोर, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपामल खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज।
2: जुआनी तेरी यार।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजाते बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजाते बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज।
1: एड्रेस: दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट: सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट: असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस: मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख: निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।